देने बैज साया दे शिष हाल देने बैज साया दे या गुस्सा के न आशा आन राय न आशा ऐसा आय बैज साया दे खोया एगो